아메 그러니 호위 그좀 에세가 다리 데레 레즈니에서 나지 아 인세즈네게 돈다 자시가 데한데 돈이 위지시 살론이 호원에 사후 라올데 하츠니 와고 응레 인세즈네게 자히신 라게니 그와타 혼신제 디시세 히올레 Hát em onda, ela não acredita, ela não se diz que é uma ciana. Aí essa gata tem lá olhe, sei lá nem como olhe, tá quando não é terceiro nele, tá quando você não diga, senha só nele. E tá de volta, aí é xixi, não senha xixi, tá de ali na ronda, e aqui é a meia na dixi, e a destra, enxergue, ये तो यह चीन रीज़ियां, वो सोंगा वो देता दाह उन्हें लेता, ना शिवा, था का ची तो यह चीया, इसे जने के, को था वो कोंगो नहीं हों होने, चीन वो तो देगा मते किया था, था का ची ना शिवा यह चीया हाँ नहीं को, चीन आई ये वो तो है यह ची से ना कुछ ना वो ना शिया 一他呀，其他那种，或者他和其他的的，大多的那红，哎，对，他那些呀的，重要的、重要的社会情，大多的那红，这就可以在在他上搞我的那种社会情，这个嘛，你呀，你基本为了是公的啊，现在给在做啥呢？我是你爹亲。第五个以后的货，那些推荐我来打呀，总得呀，我他的是外地的那个在那块打一个总经家里，总得先要我提啊，大概打上你点去，打多少的那货，打那种个对个呀，再提啥再提啦呀，再提，后行了后再跌，到那再打我脸上，现在打一起红顶的。个他呀，给我打开了你自己的盖子，你的呀，给你洗过。个他呀，给我打开了你自己的盖子，你的你刚一问你问的呀，给洗过的，那给你洗过你的。我打针他对针打，你针给个你的，他个给咋拿好的，我个拿好你嘞。好心针你问我咋个好呢？就是你个针你忘了嘞。你打一会儿，妈的，会气了，心脏的痛。你这我和我还是这个大脏的的地热气，那从你屋子里拉的，这个妈的，大爷我那邻里在肯定让你去，跟你爹上你爹大人去啊，真的，和那啥子真的，他也去像那种就。大块大的，工龄大的，我给大一点子到我家去啊！真的，和那啥子地的，他也去像那种就大块大的，工龄大的，我给大一点子到我家去啊！真的，他也去像那种，我给大会去啊！真的，这是我接送你。